I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

करता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

सबसे पहले ही गर्दन हमारे कटी एंड द फर्स्ट नेक टू बी कट और स्लेन वॉज माइन. फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन. स्टिल फिर भी द पीपल ऑफ द गार्डन स्टिल से टू मी ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं. दैट द गार्डन बिलोंग्स टू अस नॉट टू यू. ए मेरे हम नशीन शी सेज एंड शी सेज जालिमो अपनी किस्मत पे नाजान ना हो. जालिम इज एन ओप्रेसर राइट. सो जालिमो ओप्रेसर्स अपनी किस्मत पे नाजान ना हो. डोंट बी सो प्राउड ऑफ योर फेट. दौर बदलेगा ये वक्त की बात है. टाइम्स विल चेंज इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम राइट. वो यकीनन सुनेगा सदाए मेरी एंड हियर शी स्पीकिंग ऑफ कोर्स अ ग्रेटर बीइंग सो गॉड. वो यकीनन सुनेगा सदाए मेरी. ही विल श्योरली ही विल हियर माय क्राइज. क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं. इज योर गॉड नॉट ऑल्सो माई गॉड. नाउ लेट्स हैव अ लिसन टू पंकज उदास साहब विद चांदी जैसे रंग है तेरा. दिस वन इज very very controversial. ये पंकज जी ना उनको कुछ मसला ही था सांवले काले डुबली में रंग की लड़कियां से. उनको कुछ मसला ही था वाकई. अस्तग़फ़िरुल्लाह. सुनते हैं पंकज उदास चांदी जैसे रंग.

दिल लगाने की बात सोची है. सो ही सेइंग दैट ही थॉट अबाउट फॉलिंग इन लव. चोट खाने की बात सोची है एंड सेज दैट आई थॉट अबाउट एंड्यूरिंग दिस चोट, दिस जख्म, यू नो द वुंड्स. एंड आई वाज जस्ट सेइंग ऑन टिकटॉक दैट इट्स अम्यूजिंग, इट्स फैसिनेटिंग हाउ पीपल इन द इंडो पार्क एरिया ऑलवेज एसोसिएट लव विद हार्ट एक, विद पेन. सो वेन एवर यू सी, यू हियर मोर दर्द भरी सॉन्ग्स दैन यू नो ऐसे लव सॉन्ग्स. सो आई थिंक दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग. इफ यू वॉच पाकिस्तानी सीरीज, उर्दू सीरीज और इवन इंडियन सीरीज, ऑफन द ओ एस टीज, द सॉन्ग्स, द थीम सॉन्ग्स आ वेरी दर्द भरे आवाज, वेरी दर्द भरे लिरिक्स, एंड इट्स ऑफन लव इज ऑफन एसोसिएटेड विद हार्ट ब्रेक. सो इट इज टाइम टू रैप अप. अनफॉर्चुनेटली नाजरीन सामीन, ये था आज का गुलदस्ता. आपकी साथ निभाई और तवज्जो का शुक्रिया. इजाजत चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज. मैं हूँ मरियम.